0: He made all boys join in bhajans, group singing.
1: भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग निकला दिया, साई भजन से भव